बड़ी मुद्दत तो बाद, बड़ी मुद्दत तो बाद ए जन्म प्राप्त होया। भावे पढ़ने आया प्यो फलां जन्म सी, फिर मुड़के आ गया, फिर आ गया, उसनु फिर जन्म पै गया, मिल गया। तो उन्हू थोड़ी जी खबर अपने पुराने जन्म दी है, ये बारहों पढ़िया मैं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चा पातशाह अटल फरमान, असि ते गुरु साहब दे अनुयायी हां ना, इन्हां फरमान इन्हां दे वचन प्रवचन सतगुरु वचन तुम्हारे अटल ने। ओ कहंदे ने कबीर मानस जन्म तो लंब है होए ना बारे बार, अगे फिर मिसाल है जो मन भर पाके होए गिरे और ना लगे डर। दोबारा ये जन्म प्राप्त नहीं होना, भाव मानस जन्म नहीं मिलना। मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया। एक बंदे दे सिर विच खारिश बहुत है, बहुत तकलीफ है, दोनों हाथों नालों खनू ही जांदा है। कई बार ते खनूंदिया नाखन नूं खून भी लग जाता है, पर परेशान बड़ा है। आम एक खान है कि खंघ और खुरक किन्ना लकोलो ये प्रगट हो ही जांदी। किसी सियाने ने बंदे नूं कहा बड़ी तकलीफ विच आ तू, इहदा कोई प्रबंध कर। कहिंदा सुनो वड्डिया ज्ञानियां, इहदा तां कोई नहीं, मैं चल लूं, मैनूं इह दस भी अज इस नेर कोठरी विच मैं बड़ गया हां, इहदे तों बाहर किवें निकला। एडा महल ते इहदे विच नेर कोठरी विच मैं बड़ गया हां, मेरे कर्मां ने वार दित्ता है। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब सच्चा पातशाह बारह महा दे आरंभ विच कहंदे ने कि इंसान देख तू अपने वल, दो कारणां करके तू प्रभु नाल विछड़ गया है। वो कहन लगा इंज कर, इस महल दी जिस कोठरी विच वड़िया है तेरे सज्जे हत्थे दी कंध है, कंध नाल हथ ला के तुरिया रहे। बापू जी भेजदा ना बुलाया करो इत्थे बैठ के, खिमा कर मैं भी सॉरी मंगदा जी। हां जी तेरे सज्जे हत्थ दीवार है। वो कहंदा मैं नेत्रहीन भी हां। माणी गुरु जी कहंदे ने हम अंधले अंत बिखे बिखराते, असी अन्ने हां, भाव साडा ज्ञानवान कोई नहीं, साडे ज्ञान दे और विरों दे चक्षु नहीं हां। मैनू दस कहंदा ले मैं तेरा हाथ दीवार ना लवा दिना, ए तुरिया रे तुरिया रे तुरिया रे तुरिया रे, जिथे दरवाजा आऊ ना उत झट बाहर निकले। पर इहदे माड़े भागा नू इन हाथे ला लिया, पर जिस वेले दीवार दे कोल आउण लगदा छड़े ना उसने खुर करन लग पैंदा, तुरिया तुरिया दरवाजा निकल जांदा। दरवाजा निकल गया, इह दो चार चक्कर मारे दरवाजा निकल गया, बेचारा अंदर तड़फ के मर गया। हुण तरीका इही है भई इस जन्म विच आके सतसंग जी मनुखा जन्म विच आके प्रभु दा सिमरन बारंबार बार बार जपिए, पी अमृत मंतन तरपिए, इथों दी बाहर निकल आना। इसे जन्म विच ऊट नूं कुछ नहीं पता, शेर नूं कुछ नहीं पता, कुत्ते नूं कुछ नहीं पता। देखो जिन्ने ज्ञानी ने, जिन्ने विज्ञानी ने, जिन्ने महापुरुष ने, जिन्ने संत जन ने, जिन्ने महात्मा ने, जिन्ने गुरु पीर होए हन, सारे यही समझांदे हन। पर इहदी हालत आह तां गुरु ग्रंथ साहिब दे पातशाह सासन जी एक बार अदमान आखो सतनाम शिवाय। इहदी हालत उस बंदर वर्गी है जिन मार्केट मुश्की अनाज की मन बौरा रे। एक बर्तन है ओदा छोटा जिहा गलमा है, हेठों बड़ा लंबा चौड़ा है, बंदर ने देख लिया कि इहदे विच खिल्लां पईआं ने, दाणे पए ने, उन हथ पा लिया ते हथ पा के मुठ च विच पा ले दाणे। हुण मुठ चा बाहर नूं कढदा ओ नहीं निकलदी। मार्केट मुश्ती अनाज की मन बौरा रे, लीनी हाथ पसार छुटर तो सहसा परयो। ए छड़दा नहीं, दाणे छड़दे ते हथ निकल सकदा है, पर दाणे पकड़ के मुठ समेत कढणी चाहदा नहीं निकलदा। हुण होया कि गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने नाचो घर घर द्वार मार, ओ लै के ना नचदा फिरदा घर घर द्वारे द्वार जांदा है, छुटर को सहसा परयो।
ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ। ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਆਣਿਆ ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ।

0: मेरे नेत्र अनुनाच है, मेरी अखां नूं कुछ नहाक कांगा, क्योंकि इन्हां नेत्रां च साईं दे वेखण दी सिक है और सारे शरीर नूं बेचकला है। मैनूं जरा भी परवाह नहीं, जो बन जांदे ना डरा, जे सौ प्रीत ना जाए। ए नेत्र प्यारे दी इंतजार पे कर दे, कद आवेगा। इतना समा बिताया, अजे भी रब नहीं मिलिया। प्यारी साध संगत आखो सतनाम, मायूस होके बाहर फरीद एक दरख्त दे हेठां बैठ गया। दरख्त दे उत्ते पंछी चिड़ियां बोल रही हैं। फरीद ने तकिया, पंछी रौला पा रहे हैं, चिड़ियां बोल दियां हन, मेरी बंदगी दे विच खलड़ पा रही है। अंदर गुस्सा आ गया, तलखी आई, तकिया ते किया, चिड़ियो तुसी मर क्यों नहीं जांदी? कहण दी देरी सी, सारियां चिड़ियां दरख्त तो डिग पईयां ते धरती ते तड़फण लगी। ए तां सचमुच ही मर गईयां, तड़फ पईयां। दिल च दर्द आ गया, क्योंकि सिमरन करन वाले दा जिहड़ा मन हुंदा है उह बड़ा कोमल हुंदा है। दुखियां नूं वेख के दुखी ते सुखियां नूं वेख के मालिक दा शुक्र। मन बड़ा नरम हो, फरीद ने ठंडा सा लिया, ओ पापी मन, तू भी पंछी ते ए भी पंछी, इन्हां ने तेरा की बिगाड़िया? विचारियां तड़फ रही हैं, दर्द आया, वचन किया चिड़ियो उड़ जाओ, कहण दी देरी सी, सारिया चिड़िया उड़ गई। हैं, मेरे भी तो शक्ति आ गई है, भावे रब ने मिले है, पर रब की शक्ति तो आ गई है ना, मारिया भी जीवाल भी दिता। अंदर हंकार आया, सारी तुर पिया। गर्मी दी मौसम सी, सामने नगर है, पिंड दे बार बार एक खूह, खूह दे उत्ते एक नौजवान मुटियार पानी पी पर दी, प्यास लगी, चलो मना पानी पी। फरीद जी खूह दे कोल आए, इस नौजवान लड़की वल तकिया ते क्या, बेटी मैनू डाढ़ी प्यास लगी है, पानी दा घुट पिला। पानी भरन वाली मुटियार ने फरीद वल वेखिया, पानी दा डोल खूह विचों कढ़िया ते बाहर डोल दिता। इसने मैनू पानी नहीं पिलाया। फिर फरीद ने कहा, बचड़ा मैनू डाढ़ी प्यास लगी, मैनू पानी दा घुट दे। दूजा डोल कढ़िया, इस बीबी ने ए भी बाहर डोल दी। फरीद नूं गुस्सा आ गया, केडी गुस्ताख लड़की है, इनू पता ही नहीं है कि मैं प्यासा, मेरे लब सुकते जाते हैं। दो बेरी किया है, पानी तो पिलाना एक पास है, मेरे वाल वेखदी नहीं, पानी कढ़ के बाहर डोल दी। गुस्सा आया कि क्या मैनू पानी क्यों नहीं पिलांदी? तो पानी भरन वाली लड़की जिसका नाम सी माई रंग रतड़ी, तकिया तिरछी निगाह नाल ते किया, ओ फरीद, ए कोई जंगल दिया निखसमिया चिड़िया नहीं जिन्हां नूं मार के जवाल लवेगा, मैं खसों वाली आखो श्री वाहिगुरु, सारे आखो वाहिगुरु। कोई रचना इस पवित्र पावन नाम तू वांझी ना रह जाए, गुरुदरबारे जुड़े हो, सच दा वणज कर रहे हो, आओ भाई सच दे हो पारी हो, प्यार नाल सारे आखो सतनाम। फरीद ने सुने, पानी दी प्यास तो बुझ गई, ए प्यास लगी है जंगल बियाबान च नचड़ियां मार के जवा दी। इंसान ता की उथे हैवान ही कोई नहीं सी, पर तेनू किवें पता लगी? बेटी तेनू किस तरह पता लग गया? इन्हें हस के कहा, मैनू सब पता है, हैं? मैं इतनी बंदगी कीती है, अजे मेरे अंदर ही अंतर्यामता नहीं आई, तेरे अंदर किस तरह आ गई? हाथ जोड़ के फरीद ने पूछया। माई रंगरतरी ने कहा, फरीद ये सारी कृपा मेरे पति दी है। पति दी किस तरह? सारी विथ्या दसी। फरीद, माता पिता ने मेरी शादी कर दी, मैं अपने सहुरे घर चली, अद्धी रात का समा सी, मैं अपने पलंग ते लेटी हुई सी, अचानक ही मेरे कन्ना विच आवाज आई, पानी। आवाज सुनी तकिया, किधरों आई है ये आवाज? वेखिया मेरे सुहाग ने पानी मंगिया। सोचे पहला दिन है, अपने बाबल दा देश छड़ के अपने पिया दे घर विच आई, किसी होर ने पानी नहीं पिलाया मेरे पति। उठ लोक लज्जा नु त्याग के फरीद पानी दा छन्ना भरे अपने पति दे पलंग दे कोल पहुंची, पर फरीद मेरा पति फिर सौ गया सी, आंखों से लाए नींद आ गई। नींदर बड़ी पर्वत है, नींदर बड़ी पर्वत है, कहने थोड़ी उसे भी आ जाती है नींद। जे मैं भी जाके सौ जावांगी तो पति प्यासा है, इन्हें पानी मंगया है, ते जे जगाऊंदी हां तां बेआरामी, जे मैं जाके आराम करदी हां पति प्यासा सुता पिया, ते जे जगाऊंदी हां तां बेआरामी। ए सोच के फरीद मैं अपने पति दे चरणा वल पानी दा भरिया छन्ना लेके खड़ो गई, जिस वेले उठणगे उस वेले पी लैणगे। काफी समय दे बाद मेरे पति ने नेत्र खोले, मेरे वल तकिया, भगवान तू इत्थे किस तरह? सारी विथ्या दसी, तुसी पानी मंगिया सी, पानी दा छन्ना भर के तुहाडे कोल पहुंचे, तुसी सौ चुके सो, सोचिया तुहानूं प्यास लगी है, जे जगाऊंदी हां तां बेआरामी है, इस वास्ते इस इंतजार विच पानी दा छन्ना भर के खड़ोती हां, मेरे साईं जी पानी पी। फरीद मेरा पति उठिया, मेरे हथां तू छन्ना लेके पानी वाला उसने अपने मुंह ना लाया। फरीद मैं सच कहिंदी हां, ज्यों ज्यों मेरे पति दे अंदर पानी जांदा सी त्यों त्यों मेरे अंदर रब आउंदा सी। कुछ
1: You are listening to SikhNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

एतन होती खाक निमाणी गौर करे, एतन होती खाक निमाणी गौर करे। अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया, अज मिला शेख फरीदा तत्म कुंजड़िया, मनो मचिंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम ना आइए, झूठी दुनिया लग

जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज अब मान लिया मनमोहन, राम नाम हृदय में तो लाल खेप

लाश करे जीवन पर कारण लोचन पछुन सोझे कैस कबीर सुमरे प्राणी कैद कबीर सुनो रे प्राणी छोड़।

हर जस रे मन गाय ले, हर जस रे मन गाय ले, जो संगीत है तेरो असर बिचो जात है।

तेरे जैसे रंग तुरंग करीब मस्त रंग तुरंग करीब मस्त सब लोग सिदासी कावे से खुसाए खां सबे उठ जासी।

सतगुरु गरीब नवाज साहब गुरु रामदास महाराज का पवित्र वाक है भाई पूजन सब आम है सेवक ते सिख गुरु के दरबार अंदर पूजन वास्ते आउंदे ने किस नू पूजन जो कोई हस्ती होएगी ना जिस नू पूजन वास्ते आउंदे ने ते पूजन वास्ते आके उस नू पूज के अमृत रूप बाणी नू उत्तम बाणी नू गाउंदे ने सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बाणी गरीब नवाज साहब सचे पातशाह साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा ओ वाक सिख संगतां ते सेवकां दे हृदय अंदर वसिया जो महाराज ने लिखिया सी ते सिख संगत अंदर उजागर कीता सी भई पूजा अकाल पुरख की परचा शब्द दा दीदार खालसे दा इस वास्ते पूजन योग हस्ती होई अकाल पुरख पूजा अकाल की पूजन योग हस्ती है अकाल पुरख अकाल जिहड़ा काल तो रहत है जिसने सृष्टि नू जन्म दिता है जिसका नाम अकाल मूर्त है जिहड़ा अजूनी है जिहड़ा सह भंग है जिहड़ा सुते सिद्ध प्रकाश हो जांदा है ओ मिलदा गुरु दी कृपा नाल सतगुरु साहिब गुरु रामदास महाराज जी ने बड़ा पवित्र वाक कहा है भई ओ गुरु दी कृपा नाल मिलदा है जूना तो रहत है जूनिया विच नहीं आउंदा ओ 84 लाख जून च नहीं आउंदा जन्म मरण च नहीं ओ आउंदा ओ जूना तो रहत है कौन जी ओ अकाल मूर्त है उसका नाम की है जी उसका नाम है सत नाम सचा नाम उस तो छुट कोई होर भी ताकत है ना जी ओ एक है ओ अंकार ओ अंग त्रै काल विच प्रकाश करन वाला तिना समया दे अंदर ओ अजागर होन वाला एक अकाल पुरख महाराज है सब गावे हर हर उत्तम बाणी उस दी दित्ती होई बाणी नू सब गाउंदे ने पहला उस दी पूजा करदे ने पहला उस नू पूजदे ने फिर पूज के उस दी दित्ती होई बाणी नू गांदे ने उस दे दित्ते होए जो अकाल की बाणी है दिते हुए अल्फाज ने दिते हुए पवित्र वाक ने मिठे वाक ने उन्हां नू गांदे ने ते गा गा के विचार करदे ने सब गावे हर हर उत्तम बाणी पर गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज साहिब गुरु रामदास महाराज नू सवाल करता सिखा ने सतगुरु अकाल पुरख दी हस्ती ते वेखण विच नहीं आउंदी ना असी कदे वेखी है ते जेड़ी अस हस्ती असी वेखी नहीं महाराज उस दी पूजा किवें करिए महाराज कहंदे ने भी अनुभव द्वारा अनुभवता दे नाल उस नू पाया जा सकदा ओ नजर नहीं आउंदा ते महाराज फिर जो नजर ही नहीं आउंदा ते उस नू वेखिए किस विचों कहन लगे उस दी बाणी विचों अकाल पुरख महाराज दे दर्शन बाणी विचों हुंदे ने रब परमात्मा ईश्वर दे दर्शन बाणी विचों हुंदे ने क्योंकि बाणी अकाल पुरख दा रूप है अकाल बाणी दा रूप है

आरोही नमो श्री भगवती बढ़ली सरोही। ए शस्त्रां दी पूजा है, जिस वेले जोधे रण विच जूझदे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र दी पूजा उचार देने, वो शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बडैली सरोही ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र दी पूजा है, गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री भगौती बडैली सरोही, नमो श्री भगौती।

करे एक दे द्वय शुभता हाथ सोही शुभता हाथ सोही नमो लोहे की पुत्र का झलहे लहंती नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बान गंगा तरंगी तेरे शाम है मोख दाती अपंगी फिरे शाम है मोख दाती।

संगीत भुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे आ कहिंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद आगर्दन तीरं तुक तड़ाकं आगर्दन तीरं तुक तड़ाकं आगर्दन तीरं तुक तड़ाकं आगर्दन तीरं

चार ताल दे अंदर यह रीतबद्ध है। इस नूं ध्रुपद ताल भी कहिंदे ने, चार ताल भी कहिंदे, ध्रुपद ताल भी कहिंदे। श्रवण करना

0: चार ताल के अंदर यह जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पेंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण कीता हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना निज की जैसे उचार पुलाद पिए, नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। यह जो जंग विच फतेह हुई है यह किसी आदमी की नहीं, यह वाहिगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कि खालसे की फतेह चार कूट विच होएगी, चढ़दे तो लेंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्होंने अपने शब्द श्रवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया लंक

0: देख खालसे को पुरत जाएंगे देख खालसे को पुरत जाएंगे
1: एक चरे सिंह
0: झूलन नेजे हस्ती साजे झूलन नेजे हस्ती साजे द्वार द्वार पर नौब धुकाजे सवा लाख जब धुके पलीता सवा लाख जब धुके पलीता तबे खालसा उदे

राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। जो तुम गिरवर तो हम मोरा। इफ यू आर द माउंटेन लॉर्ड देन आई एम द पीकॉक। जो तुम चांद तो हम पहे हैं चकोरा। इफ यू आर द मून देन आई एम द पार्ट्रिज इन लव विद इट। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे हैं। तुम स्यो तोर कवन स्यो जोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। फॉर इफ आई वर टू ब्रेक विद यू विद होम वुड आई देन जॉइन। जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम तीरथ तो हम जाती। इफ यू आर द लैम्प देन आई एम द विक। इफ यू आर द सेक्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज देन आई एम द पिलग्रिम। साची प्रीत हम तुम से जोरी। तुम से अवर संग तोरी। आई एम जॉइंड इन ट्रू लव विद यू ओ लॉर्ड। आई एम जॉइंड विद यू and I have broken with all others. Jeh jeh jaun tahan teri seva. Tum so thakur aur na deva. Wherever I go, there I serve you. There is no other Lord Master than you, O Divine Lord. Tumre pajan kate jam phansa. Bhagat het gaavai ravidasa. Meditating, vibrating upon you. The noose of death is cut away. To attain devotional worship, Ravidas sings to you, O Master. Madhve, tum na toro, to hum nahi tore. Tum syo tor, kavan syo jore. Raag sorat, tal, choti tin tal, 16 beats.

बुद्ध सदीप जो उजियारे ज्ञाने की बदनी मनोहात ले ज्ञाने की बदनी।

मेरा तन गुरु नानक पास है। कलयुगी जीवन के उद्धार करने वास्ते जा रहे सोलह कला संपूर्ण फैलिया अनंत कला हो ठाकुर छोड़

गर्व न कीजे नानका मत सिर आगे। करोड़िया तो केड़ी चीज का माण कर जवानी रे, जवानी सदा नहीं रही, आउंदी है चली जाए। ये झूठा हुकूमत का माण कर दे। इस संसार च वड़े वड़े राजे महाराजे आए जिन्हों का नामो निशान नहीं है, माया का माण करना यह भी झूठा हुआ। माया ये तो चलता पानी, ये माण भी निरंकार ने तेरू मनुष्य जन्म दिता, चंगे कम करने हौमे हंकार फिर रहे हैं। याद रख एक दिन पछता है। साहबां दा पवित्र पावन उपदेश इस वेले करोड़िए ने पत्थर वर्गा मन पानी काठी सिर तो रख दिती, दूजी छिन विच मेरे धन गुरु नानक पातशाह के चरणा ते रोण लग, पातशाह मेरे बख्श लो मैं पापी, मेरे कोलो भूल हो गए, अपने चेहरे के दाग जेड़े दिखते जे शीशे कोल जाइए, शीशे कोल ना जाइए तो पता ही नहीं लगता। इसे तरह अपने कीते कर्म जेड़े हैं उन्हों का पता ता लगता है जे किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए। महापुरुषों का जीवन साफ शीशा हो जाए। अज धन गुरु नानक पातशाह जी निरंकारी जोत बाबे के दर्शन करके करोड़िया रो रही, घुबा मार के रोई जाता, कहता है पातशाह मेरे बख्श, अरदास कर रहे आओ आप भी करिए। किस तरह करोड़िया नाले रोंदा है नाले पर पहला सेवक बोलेगा पिछे सारी संगत।

रो लिया थे। रो रो के मेरे तन गुरु नानक पातशाह ने चरणा रुतो पातशाह बस अदूर कह लगे मरदाने बख्शीए। मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनू पुछ के बख्श दो, ये तो तुहाडा बिरद है जो शरण आवे तो तंठ लावे ए बिरद तो। हजूर ने अमे दृष्टि तकिया तकिया करोड़िए फिर जप सतनाम संसार रोगी नाम करोड़िए नाम जपे नाम जपेगा तेरा मन पवित्र नाले बाणी पड़े नाले सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेनू निरंकार ने माया दिती है दान पुण्य को जो माया भी कर सत्य हूं करोड़िया से गल च पला पा के कहना पातशाह एक बेनती मेरी करवा केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे घर चल मैं थोड़ी सेवा थोड़ू प्रसाद छकाव दुध पिलाव। अदूर कह लगे क्यों मरदाने चलिए। मरदाने ने कहा महाराज भी कोई पूछण वाली गल नहीं चलो हूं तोड़ा सिख बन गया कौड़िया। अदूर कह लगे मरदानिया अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह। हजूर कह लगे मरदानिया अजे सिखी दिती सिखी की है हुक्म ते जे हुक्म मनेगा तो फिर ही साडा सिख बन सिखी गल्ला भी सिखी गल्ला दी सिखी कमजोर सिखी का स्वरूप की है उस वाहिगुरु का हुक्म हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का मह करोड़िए जो तेनू असी उपदेश दिता है ओनू कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करी असी आवांगे तेरे घर प्रसाद भी छकांगे ते आके वाहिगुरु दे नाम का पवित्र जो अमृत है ओदा प्रवाह और करोड़िए चरणा ते बह पातशाह मैं गरीब तेरी बख्शिश कर दिती है। हजूर कह लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहिगुरु की जिस वेले बख्शिश का समा आता है फिर जिना संभाल लेता है वह पाए करोड़िए बख्शिश होगी तो भी गुरु की बख्शिश हो बख्शिश वाला समा मिले बख्शिश तो सदीव ही है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन करते सन उस वाहिगुरु की सदा ही मेहर है पर उस मेहर को संभाल लेना यह वड्डी आप जिन्हों के भागा बख्श दो वेले आके आप कीर्त नहीं जुड़ी जिन्हों से गुरु जी कई आने ही नहीं कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्हों ने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया जो कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शिश ही नागा नहीं पाएगा। करोड़िया ये मालिक की दात ये जोर की चीज नहीं न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया है कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसे पासे उड़ीक है ते कई गुरु प्यारे तुहाडे वर्गे माई भाई कीर्तन का अमृत पी तो यह दात गुरु की अपनी है। हजूर कह लगी मरदानिया रवाज चुकी ते शब्द की अखीली पचपन मरदानिया ने रवाज चुकया ते बाबे ने सोने गले चो ये शब्द का की किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

शस्त्र प्रमाण तीर, तीर मतलब निजा, तफंग तीरो तफंगो बंदूक, बड़ो राम जंगो रिवाल्वर, धनक धार अनियर धनसबान और उसके तीर जड़े ने अनियर वर्गे होने चाहिए, अणियाले तीर जड़े दूसरे तीर ने ना वह वज जा मुड़के कढ़े जा सकते हैं तो आदि बच सकता है, पर अणियर तीर जड़े ने वह बार नहीं आते। जो एक बार अंदर तस जाना जो खिचोगे नाल ही अंदर भी नाल ही लै आऊंगी, वोदिया दो कड़िया होंदिया एवं मुड़िया हुई, एक सीधी होंगी तो दो एवं मुड़िया होंगी, सीधी के अंदर चली जाती तो बहर आने लगे दूजिया जड़िया ने फिर कहिंदिया हुण आ जा अकाल पुरख के कोल ही चल रहे हैं। हां जी, इसलिए जे मेरिया भैन कोल कि होंगे ना शस्त्र दिल्ली, यह हाल नहीं सी होना जोड़ा होया। पता की हाल हो, सरदार साहब होनी शीशगंज साहब दर्शन करने आ रहे, उन्होंने सरदार ने पिछे मोटरसाइकिल से बैठे हुए, उन्होंने नहीं पता कि अज यह भाड़ा वर्तना है, डांग दे के मोटरसाइकिल के तारा च डेग के वारी वारी उन्हें ड्यूटियां लाइया हुई सी, एक ने सरिया मारिया सरदार जी के सिर पर वो थले डिग पाए, दूसरे ने धार मारी पिस्तौल पेट्रोल की, तीसरे ने वो जिद सिगरट पीते होंगे एवं करके वो दाड़ी भी सिखा की चट फूकते थे, उन्हें अग लाती उथे सड़ बह गए। जिहड़ी बीबी जी सी बेचारे बड़े मायूस घबरा गए, भजन की कोशिश पर दुष्टा को कितने भजना, कोल ना तो तीर ना तफंग ना राम जंग ना धड़क तार अणियर ना कबंध कोरड़ा, तो कोल की सी जा राती टीवी वेख के आए सी ते जाके हुण वीसीआर वेखना सी, ये कोल सी ते बाकी कुछ नहीं सी, गहने पाए सी उन्हां दुष्टा ने, एक ने इधरों फड़िया दूसरे इधरों फड़िया कपड़े फाड़ के सड़क के शरेआम बेइज्जतियां कीतियां, उन्हां दियां जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह दे सिंघां ने इन्हां दियां धीआं नूं दुष्टा दे कोलों छुड़ा के ते घरीं जा के छड़ के बाइज्जत तौर ते छड़ के ते आउंदे सी, उन्हां दुष्टा ने यह नहीं सोचिया भाई इन्हां ने कभी साडे ते उपकार कीते सी। ध्यान दे कोई जकारे फिर छड़ लांगे जरा हुण कर लईए, यह नहीं सोचिया गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कोल ब्राह्मण

आगे बिना शस्त्र जे आप केस धरे हुए हो शस्त्र ना हो गुरु गोबिंद सिंह कहते सिखो भेड़ बकरी तो वध तुम कुछ नहीं इसलिए तुहानू भेड़ बकरियां नहीं मैं बनाया मैं तुहानू सिंह बनाया शेर और शेर पता कौन हुंदा शेर मैदान जंग विच उत्तों छाल मार के हुंदा छाल मार के मैं तुहानू दसदा दिल्ली गुरुद्वारा शीशगंज साड़न लई 12,000 की टोली आई 12,000 की 4,000 ते आया इधरों फतेहपुरी वालों ते 4,000 आया लाल किले वालों ते 4,000 सामने उस स्टेशन वालों आया ते जेड़े सी ना उन्हां दे खिलारे होए बंदूकां लैके वह भज गए जेड़े दुष्टां दी फौज सी वह भज गई ते 2-4 साढ़े सिख बेचारे लागे कोतवाली उन्होंने पिस्तौल ते उन्हें रात ही खोले से डंडे इन्हें हाथ ही फड़ाते डंडे लैके शीशगंज अंदर आन बड़े असीं डे सा कीर्तन कर बाबे ने साडे राम जपो जी ऐसे ऐसे हां जी राम ही डे सी जपण उन्हें सिखा आके कहा भाई खालसा जी हुण राम जपना छड्डो ते खंडे खड़काओ 5 मिंट तुसी होर चुप कीते रहे ते तुहानू इन्हां ने उत्ते ही आण के फड़ के जीवदे साड़ देना तियां तुहाडियां खिच के लै जाणगियां आ गोलकां गलकां लुट के गुरु साहब की बेदबी हो जानी 5 मिंट केवल रहिंदे जे कुछ कर सकते तो कर लो यह साडे सिंह साहब बहादुर महाराज नूं नमस्कार बख्शण गुरु गोबिंद सिंह साहब ने थापी दी और इन्हां कोल शस्त्र सी जिहड़ा सानूं बाबा महाराज बाबा जरनैल सिंह जी ने कीर्तन च भेटा दिता सी महाराज ने प्यारे खालसा जी मेरी बेनती सुन लो मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने थापी दी इन्होंने अंदर वास किया और शस्त्र कढ़िया 3-4 सिंह होर सी वह इन्हों के नाल हो गए और इन्होंने छाल मार के बबर शेर जिमें बबर शेर के नजारे उथे मैं वेखे गुरु गोबिंद सिंह की बाणी मैं पढ़ना हूं पाप समूह बिलासन को कल की अवतार कहावेंगे तुरकच्छ तुरंग स्पच्छ बटो करकार कृपान कम पावेंगे निक्षे जिम केर पर्वते तसोर दिवाले पावेंगे फल पाल पयाए संभल के हरजू हर मंदिर आवेंगे ओ मैं सुनिया एक तुक निक्षे जिम केर पर्वते केर का मतलब बब्बर शेर है बब्बर शेर जो भुखा हों जो फिर पर्वत तो पवक मार के छाल मार के जो मैदान च आ उन्हें फिर जो ना वो पता की लिखे वो जो आप पढ़ते हैं गुरु नानक साहब का हां जी सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चान होवा ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा अगे की है सिंह बुकते सिंह फिर गजे ते की होया मिर्गावली पन्नी जाए मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर पर होवा ऐ बाबे का छाल मार के शीशा के पौड़िया तो तलवार इतने फल ली ते जकारे छड़ दे पंज पै पंज के ओ पंज सत पिछे बेचारे मेरे वर्गे वह भी मगर मगर भजे होने जदों उन्हें वेख्या गुस्टा तो ये ते आ गए तलवार इतने रखी बाबे जरनैल सिंह वाली ओ 4,000 जिहड़ा सी ना फतेहपुरी वाला भज उठा 10-15 दंद टुट गए 5-7 गोडे टुट गए है जी जो भज उठे वाले ऐ वेखण वाले भजन ते फिर ये उठे खलो गए इन्हें आख्या गल सुनो असी गुरु गोबिंद सिंह हां ना असी बीबी नूं मारदे हां ना असी बुढ़े नूं मारदे हां ना असी बच्चे नूं मारदे हां ना असी भजदे नूं मारदे असी भजदे नूं नहीं मारदे तुसीं प्यो दे पुत्त खड़ो जाओ नहीं तां असीं इधर जाने जिहड़े आ आउंदे ने उहनां नूं छड्ड के लाल किले वाल भज उठे उह पहलां ही अगे भज उठे है जी 12,000 दुष्ट ऐ सारे बाबा जी ने मैं तां कहिंदा महाराज इहनां नूं वधिया सुना के फिर मैं समाप्ति करनी है क्योंकि तुम बहुत कुछ सुन रहे हो 4 बजे दीवान लगा रज गए होवोगे श्रवण करो गुरु गोबिंद

एक कर्म छड़ के तू करोड़ा कर्म कर। भुखियां नूं रोटी खुआ, जल चका, सेवा कर। पातशाह कहंदे ने तू एक कर्म छड़ के कई कर्म करेगा, जे नाम हिरदे विच नहीं वसिया नरकां दा बुआ जरूर वेखना पवेगा।

नाम मिलेगा उन्हनु जिन्हनु वागुरु आप देवेगा। हुण असीं आखांगे जदों देवेगा लै लांगे, नहीं तू रो अरदास कर, पातशाह जे नहीं लिखिया लिख दे, इतना ते तू कर सकदे, ओदी कलम नाल प्यार कर, ओनू चुम, ओनू अरदास कर। दाता जे लेख नहीं लिखिया तू लिख सकदे, तेरे हथ बहुत कुछ है, तू अपना फर्ज निभा, अगला अपने आप फर्ज समझेगा। बच्चे दा कम है रोना, मां दा कम है रोना, सुन के उनू दुध देना। इसलिए मिलेगा उनानु जेड़े मंगणगे जिनानु आप देवेगा, देवेगा उनानु जेड़े मंगणगे जिनानु लोड़ ही नहीं, उनानु की मिलने।

0: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: राग गौड़ी पूर्वी विच ऋषभ धैवत कोमल दोवे मध्यम ते बाकी सुर शुद्ध लगदे हन। इस राग दी जाति संपूर्ण वादी ऋषभ संवादी पंचम अते समा शाम दा पहला पैर है। इस राग विच कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई शब्द दा गायन कर रहे हन प्रिंसिपल शमशेर सिंह क्रीर।